0: मीडियम वेव 188.32 मीटर।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर।
1: यह आकाशवाणी
0: सुबह
1: का
0: के 6:05 हुए हैं।
1: प्रस्तुत है
0: अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुन लेते हैं सर्वप्रथम ये मातृवंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

समूह स्वर में ये मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। गीत रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये निर्गुण भजन।

पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ये निर्गुण भजन अभी आप सुन रहे थे। रचना थी संत कबीर की। और अब सुनिए ये भक्ति रचना।

उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप सभी का स्वागत है। अब से कुछ ही समय पश्चात प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री राम चरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर होगा रविंद्र साठे का। भूले बिसरे गीत आप सुनिएगा प्रातः 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6:55 पर। सुबह सुबह ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7:00 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह के 7:10 पर। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:20 पर। सुबह 7:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता।

समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा सुबह 10 बजे से। फोन करें, लोकगीत सुने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत, यह कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:55 पर। सुबह 11 बजे आप सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा 2:10।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार। समय होगा दोपहर के 2:15। इस घंटे की सुर्खियां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 5:02 पर। संगीत सरिता, यह कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर।

सदाबहार गीत। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर, शाम 6:45 पर। आनंद लीजिएगा लोक रंग का। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, समय होगा शाम के 7:10। लोक रंग, ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर, शाम 7:30 पर सुनिएगा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हेलो किसान वाणी।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर है रविंद्र साठे का।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर था रविंद्र साठे का। अभी आपने सुनी इसकी 134वीं कड़ी। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: पतिता, इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
2: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
3: मेरा स्वराज, मेरा स्वराज।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
1: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
2: संपर्क करें 8720-0096-77
1: 8720009677।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।
4: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: पतंगा, इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी शमशाद बेगम और चितलकर की। गीत लिखा था राजेंद्र किशन ने, संगीत था सी रामचंद्र का।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम गीत।

0: सोलवा साल, इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी हेमंत कुमार की, गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, इस गीत को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तर जनसेवां कुर्वता 25 वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शी नीतिभिः अथ कठिन परिश्रमेण च 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसित राष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विकस्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञानविनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स्पटले @AIR News हिंदी अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIR News अलर्ट्स इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: वस्तु सेवा कर परिषदः 57वां उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवा कर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तुसेवाकरव्यवस्थायाम् आगामि परिष्काराणां कृते 5 सूत्रसम्बद्धयोजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बरमासस्य 17 दिनाङ्के गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तं प्रारब्धा सेवासंकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवायात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशीपर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 25-वर्षीयं सेवासङ्कल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह। उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम सुबह सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी ना कभी सफल ज़रूर होते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो मेहनत शारीरिक हो या मानसिक। सफल होना है तो मेहनत करनी ही है। मेहनत करने से व्यक्ति की असली पूंजी बनती है और वो मनचाही सफलता पा सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोग प्रयास की कमी के कारण नहीं बल्कि गलत दिशा में प्रयास करने की वजह से असफल होते हैं। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ और भी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को वास्तविक और प्राप्त करने योग्य रखें। अपनी योजना और रणनीति की समीक्षा करें। अपने दृढ़ संकल्प और धैर्य का परीक्षण भी करें। स्वस्थ शरीर, मजबूत दिमाग, दृढ़ इच्छा शक्ति और चीज़ों के प्रति सकारात्मक रवैया बनाना भी बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें और सकारात्मक आदतें भी विकसित करें। अपने शरीर और दिमाग के लिए व्यायाम करें। सबसे बड़ी बात कि सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में निरंतर कई तरह की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं, चाहे वो पारिवारिक हों, व्यावसायिक हों। शांति और कला बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहती हैं। हमें किसी में भी निपुण नहीं हो सकते, लेकिन इसे हम किस तरीके से देखते हैं और कैसे हम इसे निपटा सकते हैं, ये हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। एक प्रसिद्ध युक्ति है कि असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता किसी काम को दोबारा शुरू करने का एक मौका देती है कि उसी काम को और भी अच्छे तरीके से किया जाए। जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे, तो ये संकल्प हमें सफल बनाता है। इस संकल्प को निरंतर बनाए रखना पड़ता है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। मन में ये विश्वास ज़रूर होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा है उसे मैं पूरा अवश्य ही करूँगा। कभी कभी हम जब सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं तो कुछ नकारात्मक बातें भी हमारे सामने आती हैं। अगर हम उन बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। श्रोताओं, सुबह सुबह में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है रवी फसल बोनी पूर्व मिट्टी परीक्षण। विशेषज्ञ स्वर है विपिन जैन का।
2: खेती का आधार ही बीज और एवं मृदा परीक्षण रहता है। मृदा परीक्षण को बहुत ही बारीकी से यदि अपन समझेंगे तो जैसे अपन बीमार हो जाते हैं तो अपने खून की जांच होती है। खून की जांच होने पे अपन को पता चल जाता है कि किस बीमारी के लक्षण हैं या कौन सा पैथोजन है जिसके कारण हमें ये दिक्कत हुई है। उसी प्रकार से भूमि में भी मैदा में भी 16 पोषक तत्व होते हैं और हर एक पोषक तत्व का एक अलग कार्य रहता है। और जब अपना पौधा अंकुरित होता है, अंकुरित से लेके फलन तक, उसे हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये 16-17 पोषक तत्व की कमी होती है तो निश्चित रूप से पौधों की ग्रोथ में और एवं लास्ट में उसके उत्पादन में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए अब जैसे खरीफ का सीजन चल रहा है, जैसे अपनी अगली फसल की कटाई होती है अक्टूबर के लगभग, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। कटाई होने के उपरांत जैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेके जब तक अपन बुवाई नहीं करते, नवंबर या दिसंबर तक जब तक खेत की अपन बुवाई नहीं करते तब तक अपन खेत से मैदा नमूना ले सकते हैं। ये एक फसल की कटाई से अगली फसल की बुवाई के बीच का जो समय है उस समय आप मैदा नमूने निकाल सकते। खेत का नमूना लेते समय मुख्य रूप से अपन को ध्यान रखना है जो अपन खेत का नमूना लें तो वो मेड़ के पास ना हो, पहली बात। दूसरी बात देखें कि कोई पेड़ की छाया जहां जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान पर अपन को नहीं लेना है। ऐसे स्थान पर नहीं लेना है जहां बहुत अधिक जल भराव होता हो। इसके बाद जब अपन मैदा नमूना लेता है तो बी आकार का गड्ढा खोदना है। जब बी आकार का गड्ढा खोदते हैं तो उसमें अपन को ध्यान रखना है गड्ढा खोदते समय लोहे की वस्तु का उपयोग नहीं करना है, लकड़ी का उपयोग करना है। और मिट्टी लेते समय अपन को 5-6 जगह से मिट्टी लेना है और ऊपर की मिट्टी अपन को जब बी आकार का गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी रहती है वो हटा देना है। उसमें ध्यान रखना किसी प्रकार का डंठल कचरा कूड़ा ये उसमें नहीं होना चाहिए। जब बी आकार का गड्ढा बनाने के बाद उससे साइड से अपन मिट्टी खोदते हैं नीचे तक और ये मिट्टी लगभग लगभग आपकी हर जगह से आप आधा आधा किलो खोदें और लास्ट में सब मिला के आमने सामने का भाग अलग करते जाएं और लास्ट में 500 ग्राम द्वारा आपका मैदा नमूना तैयार हो जाता है। जो भूमि में रहते हैं फफूंद जनक जो बीमारी रहती है वो एक बीज के द्वारा होती है और भूमि के द्वारा होती है। तो बहुत सारी रोग के जो जैसे कोई भी रोग लगा तो उसकी जो फंगस वगैरह है स्पोर वगैरह है वो जमीन में गिर जाते, तो ये जब अगली फसल होती है तो उस पर प्रकोप कहते हैं। तो ये जांचों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन सी फफूंद जनक बीमारी है या जिस प्रकार से आप देखते हैं कि उकटा वगैरह होता है, तो इस समय समय पे अपन मैदा परीक्षण करा के देख लेते हैं, फिर उनके उपचार भी कर सकते हैं।
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था रवि फसल बोनी पूर्व मिट्टी परीक्षण। विशेषज्ञ स्वर था विपिन जैन का।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43 22 70।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने स्टेट पार्टनर के रूप में प्रदेश के टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन अब केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का माध्यम भी बन गया है। उन्होंने नागरिकों से पर्यटन के लिए देखो पूरा देश पर सबसे पहले मध्य प्रदेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि अब चंबल नदी पर गांधी सागर बांध के पास दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है।
1: केन बेतवा, पार्वती काली सिंध और अब तो अभी 4 महीने बाद ही पंप स्टोरेज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर संयंत्र मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है। चंबल के पास, चंबल की नदी के एक बहुत बड़ा गांधी सागर डैम है। अपने यहाँ ऐसे बिजली के बनाने के लिए पंप स्टोरेज की एक नई टेक्निक चाहिए, जिसके बलबूते पर जो पानी एक बार रहेगा वो पानी बार बार रिसाइकल करते हुए आपकी बिजली लगातार बनती जाती, वो बिजली बनाते हुए यंत्र आपने टूरिज्म के माध्यम से भी काम में ले सकते।
0: प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध में सभी विभागों, संभायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः सितम्बर से नवम्बर के बीच आयोजित करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने कल रेपो दर में 25 आधार अंक यानी 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 5.25 से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली बैठक के बाद आज ये घोषणा की। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है, जबकि GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार रेपो दर बढ़ने से बैंक ऋण वृद्धि की गति कुछ कम हो सकती है, लेकिन इसका समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकें भी करेंगे। ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार के पीएम मित्रा पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की संभावनाएं उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखी जाएंगी। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या के आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किशोर कुमार की जन्मस्थली पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए प्रदान किया जाएगा। 12 अक्टूबर को ये शाम मस्तानी गीत संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1000 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश का अलर्ट है। कल भी पन्ना, सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश से मानसून 3 अक्टूबर को विदा हो चुका है। इस बार मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बड़कुआ रोड पर आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। शिवपुरी जिले में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन आज 8 अक्टूबर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नर्मदापुरम स्थित एसएनजी स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय सेवा ज्योति संकल्प यात्रा निकाली गई। वहीं जबलपुर में भी भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत कल 8 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। मंडला में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह 2026 का समापन हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए पोस्टर, पेंटिंग, रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं कराई गई। सतना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद और रामपुर बघेलान के सभी 1552 मतदान केंद्रों पर युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी नगमा।

0: कहू ना प्यार है। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे थे इब्राहिम आशिक ने, संगीत था राजेश रोशन का। पसंदगी थी आप सभी की। गुजराती बाजार सागर से राजेश मनमानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना, चंपक भाई, निर्मल, भोले, रूपेश, सीमा महक, अंजलि, भूमि, बरखा, प्रियंका, शंकर मोटवानी और आपके सभी साथी। सनावत से मोहम्मद सादिक, अहमद, मुश्ताक, शाकिर, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, शादाब खत्री और आपके सभी साथी। यहीं से हाजी इसहाक लोमानी, उमर, अयूब और आपके सभी साथी। महोबा से उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और आपके सभी साथी। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, ममता, कीर्ति और भूमिका।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल उच्चतम तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ यहां उपलब्ध है सभी प्रकार के स्त्री रोगों का इलाज, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, डिलीवरी सुविधा, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी, स्तन में गठान और निसंतानता का किफायती व आधुनिक इलाज।
2: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने सागर।
3: कर्मा करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
4: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
5: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
4: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

रिफ्यूजी, इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था अनु मलिक का।

0: फरमाइश थी आप सभी की। नवाशहर से सुरिंदर संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और आपके सभी साथियों ने यह फरमाइश हमें भेजी है। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आपके सभी साथी। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव और आपके साथी। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान, आशीष, निर्मला, विशाल और आपके सभी साथी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, मैत्रे, अंजलि, करवा, बाला साहेब, रामनिवास और आपके सभी साथी।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
2: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट। खेती को दें नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
1: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720096777।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

मुझे कुछ कहना है इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज थी सोनू निगम की, गीत लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। फरमाइश थी आप सभी की नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र और आपके सभी साथी। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और आपके सभी साथी। पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या और आपके सभी साथी। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल और आपके सभी साथी। इसके साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता।

0: कैलाश खेर की आवाज में यह गीत अभी आपने सुना।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
2: स्वराज 733 FE रोटावेटर के साथ मात्र 6,49,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में, राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना।

0: मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8780096777
0: 8720009677।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

लकी अली की आवाज़ में यह गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार।

0: के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया।

0: क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउत उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जा अब्दुल।
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गाँव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक से ये चेतावनी गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
2: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दें नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
1: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720009677।
3: और अब सुनिए अजुद्दी दास कबीरपंथी से ये लोक भजन।

इस लोक भजन के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 21 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रयागराज से बीनू प्रजापति और बुढ़ार मध्य प्रदेश से सविता सोनी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आज़ादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आज़ादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह भर नहीं है, इतिहास उन धड़कनों का नाम भी है जो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे अंदर स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि उस साहस को प्रणाम करना है जो उम्र का मोहताज नहीं था। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, आंखों में सपनों और कल्पनाओं की दुनिया होती है, उस उम्र में उन्होंने अपने हाथों में देश की आन थाम ली थी। इतिहास के पन्नों में धड़कती एक ऐसी घटना जिसकी नमी कभी सूखी नहीं। एक नाव थी, एक नदी थी, एक रात थी, और उस रात से कहीं अधिक काला

सत्ता का अंधकार था और सामने 12 साल के एक छोटे से बच्चे का अडिग साहस, एक ऐसा क्षण जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। बाजी राउत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और माता जी का नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का काम किया करती थीं। बाजी राउत के दो बड़े भाई भी थे। अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी माँ बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थीं। लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। नदी की धार संग बहते उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था, बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राजे रजवाड़ों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। वैष्णव चरण पटनायक ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ढेंकनाल के कोने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में प्रजामंडल की बैठकों में शामिल होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी वो किया करते थे, ताकि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। चूंकि वो एक मल्लाह के पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेंकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेंकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठपुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए

ये कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर जब पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी, तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल की भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगु साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है

watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना बैंग बैंग फिल्म से। ऐश किंग, शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाजों में अन्विता दत्त और कुमार के बोल, संगीत है विशाल शेखर का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। राज फिल्म से गाना सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में सईद कादरी के बोल, राजू सिंह का संगीत।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का अगला गाना उंगली फिल्म से गुलराज सिंह की आवाज में, गुलराज सिंह का म्यूजिक और लिरिक्स हैं मनोज यादव के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं द स्काई इज पिंक। इस फिल्म से गाना गुलजार के बोल, प्रीतम का संगीत।

अरिजीत सिंह के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज फिल्म द स्काई इज पिंक से। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं जवान फिल्म से अरिजीत सिंह के साथ शिल्पा राव की आवाज, कुमार के बोल, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

जय श्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल, इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: रहेगी।
1: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये SD नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
2: खफा ना होना, अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न शबाब तुमने।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को ये पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जी पी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे दमोह जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम भी बदल गया है। सुबह शाम जहां मौसम में ठंडी देखी जाती है, वहीं दोपहर में तेज धूप और गर्मी भी देखी जा रही है। सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में किसानों के निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान 17 अक्टूबर तक निर्धारित 23 पंजीयन केंद्रों पर ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा रहे हैं। इस खरीफ सीजन में जिले में सोयाबीन का रकबा करीब 50,000 हेक्टेयर में है। इसमें 35,000 से अधिक किसानों ने सोयाबीन की बोनी की है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। PWD ने बारिश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी 18 सड़कों के लिए कुल 6,66,18,000 रुपए के टेंडर जारी किए हैं। पहले चरण में 10 सड़कों की 51.5 किलोमीटर लंबाई पर 3,85,72,000 खर्च होंगे। दूसरे चरण में 8 सड़कों की 52.5 किलोमीटर लंबाई पर 2,80,40,000 रुपए खर्च होंगे। PWD के कार्यपालन JP सोनकर ने बताया है कि STMC स्कीम पहली बार लागू की गई है। इसके तहत एजेंसी को 1 साल तक सड़क की देखरेख करनी होगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत पिछले दिनों दमोह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन निकली, जिसको संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में दमोह जिले के 468 तीर्थयात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। हमारे संवाददाता से बातचीत में मंत्री श्री लोधी ने बताया,
3: प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थदर्शन की एक ट्रेन दमोह से होके जा रही है, जिसमें 468 यात्री जा रहे हैं, 10 अनुरक्षक, 1 पर्यवेक्षक।
2: पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद दमोह से कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबी फोर लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब स्टेट हाईवे 63 को 2 लाइन से 45 मीटर चौड़ा करके 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। ऐसा होने से दमोह कटनी के बीच यात्रा समय में करीब 1.5 घंटे तक की कमी आने का अनुमान है। जबलपुर मंडल के DRM कमल कुमार तलरेजा ने सागर से दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां चल रहे करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहा नया FOB पुराने ब्रिज से करीब 3 गुना अधिक यानी 12 मीटर चौड़ा होगा। इसमें यात्रियों के लिए लिफ्ट और एक्सकलेटर की सुविधा भी रहेगी। जिले के तेंदुखेड़ा और जबेरा क्षेत्र की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अब संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने दोनों तहसीलों के 5 प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दमोह में 2608 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 2370 कनेक्शन भी किए जा चुके हैं। पिछले दिनों CSIR की 85वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित ANSC परिसर के भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डाक टिकट का विमोचन किया। इस डाक टिकट की डिजाइन दमोह निवासी मयंक गाडिया के द्वारा तैयार की गई थी। दमोह पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीन ऑफ क्राइम मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। खास बात यह है कि इस वैन के जरिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से ही साक्ष्य का मनोवैज्ञानिक तरीके से संकलन, संरक्षण और प्राथमिक परीक्षण कर सकेगी। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43 22

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए, फ़ोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: भैया बहनों, हम और लेके आ गए हैं आपको अपनो कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने।
1: हम हैं भैया आपके संगे आपके दोस्त जयशेखर
0: और भैया हम हैं शशि प्रभा गुप्ता।
1: स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम राम, राम।
1: और ले थे बिन्ना जो पहलो फोन।
2: हेलो
1: भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है।
2: अरे जयशेखर जी, राम राम।
1: राम राम भैया, अपना नाम बता दो।
2: पवन कुर्मी बोल रहे सर, अपन ग्राम कनेरा धामोनी से।
1: अच्छा अच्छा, तो पवन भैया बताओ कि जो बांध बन गए होते हैं
2: उल्लन बांध,
1: तो अपने घर से कितने दूर है?
2: सर वही है 10-12 किलोमीटर।
1: तो का फर्क पड़ो भैया, रास्ता जो अपन जाते
2: बांधरी पे से आने पड़ा था सर।
1: अच्छा अच्छा, कम से कम खेतों को पानी मिले, पीवे को पानी मिले। अच्छा पवन भैया, आप जानते हो कि हम पूछा थे एक अटका।
2: बिल्कुल सर।
1: तो अटका कह रहा है कि पेड़ पे रेत है मनो पंछी नहीं है, जटा जूट है मनो साधु नहीं है।
2: सर तो नरियल है।
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया। अच्छा पवन भैया
2: जी सर,
1: आप बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
2: सर रामकिशोर मुखिया जी को सुनवाओ आप, तो कोई भी सुनवा दीजिए।
1: सुन लो भैया पवन, अपनी फरमाइश पे रामकिशोर मुखिया को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677।
2: हेलो, फोन करेंगी सुने दीदी?
3: बिल्कुल भैया,
2: गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोद राजघाट से।
3: अच्छा भैया, का करो तो भैया होते पे?
2: दुकान करे स्टैंड पे, बस स्टैंड पे रोड आई के बारे।
3: काय की है?
2: चाय पान नाश्ता की है दीदी।
3: अच्छा भैया, तो का कैसी सावधानियां रखा थे, साफ सफाई की कैसी का व्यवस्था रखा थे आप अपने नाश्ता की दुकान?
2: जी दीदी, साफ सफाई रखते हैं। हाँ जी।
3: अच्छा, और जो कचरा निकला थे तो उसको कैसे का निदान करे थे?
2: कचरा उसमें रखते हैं दीदी, रखे हैं डस्टबिन। जी दीदी, गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं।
3: अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। और भैया, जो चाय की पत्ती निकला थे उसको क्या करते हैं?
2: चाय की पत्ती दीदी पेड़ों पे डालते हैं।
3: अरे वाजा, तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो इकट्ठी कर लिए थे आप?
2: इकट्ठी कर लेते हैं दीदी।
3: अच्छा, फिर धो के डाल दी थी ये पेड़ों में?
2: जी दीदी, जामन के पेड़ लगाए हैं। हाँ जी।
3: तो दिन भर की खट्टी कर ले तू?
2: दिन भर की खट्टी कर ले दीदी।
3: चलो अच्छी बात है भैया जा तो। और भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछ लें?
2: जी दीदी पूछो, अटका भर है तो बताएं।
3: भैया आज को अटका कह रहा है।
2: हाँ।
3: पेड़े में रहते है मनो पंछी नैया।
2: पेड़े में रहते पंछी नैया।
3: हाँ। जटा है मनो साधु नैया।
2: जटा है साधु नरियल दीदी।
3: बिल्कुल भैया, सही कही आपने।
2: जी दीदी नरियल है तो।
3: बड़ी जल्दी बता दो आपने।
2: हाँ दीदी, हमें याद आया नरियल है तो।
3: चलो भैया, आपने देखो अटका को उत्तर तो दे दो है। अब आप हमें लोकगीत बता दें कि कौन से सुनने हैं आपको?
2: सोनी कक्कड़ को आप ओइसा भी सुनवा दो सर जी।
3: ठीक है भैया, और अब आपको हम सुनवा रहे हैं सोनी कक्कड़ को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दें नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677।
2: हेलो,
3: फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत कर रहे हैं आपको।
2: हाँ जी सर।
3: नाम बता दो अपनो।
2: हम आरती दुबे हैं धबोली से, सायापुर के यहाँ पर।
3: आरती बिन्ना धबोली में क्या कर रही हूँ आप?
2: अबे तो पढ़ाई कर रहे हैं।
3: कौन सी क्लास में हो?
2: फर्स्ट ईयर कॉलेज।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज।
3: तो आरती बिन्ना कछु अपने बारे में बताओ, क्या शौक है आपके?
2: हमें टीचर बनने का शौक है।
3: और रेडियो पे कौन कौन से कार्यक्रम सुन रही हूँ?
2: सुनाते हैं, फोन करे लोग भी सुने, युवा वाणी।
3: और हमेशा अपनी और अपनी सहेलियों की सुरक्षा के प्रति भी सावधान रहना है।
2: हाँ जी।
3: कहूँ भी आपको लगे कि कोई आदमी संदिग्ध है या आपको कोई परेशानी सी हो सकत है, तो भैया पुलिस वालों को बताओ या अपने पापा को फोन करके बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ।
2: हमारे कॉलेज के पास पुलिस चौकी है वहाँ पर।
3: बहुत ही अच्छी बात है। सावधानी अगर आप रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, डरने की कोई बात ही नहीं है।
2: जी सर।
3: अब हम आरती आपसे पूछ रहे हैं अटका।
2: जी सर।
3: अटका कह रहा हो कि पेड़ पे रेत है मनो पंछी नहीं है, जटा है मनो साधु नहीं है।
2: नारियल।
3: सही कह रही हूँ। तो आरती बिन्ना बताओ कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे?
2: रामनाथ अहिरवार का कोई अच्छा सा लोकगीत सुना दे।
3: चलो सुन लो आरती बिन्ना अपनी फरमाइश पे, रामनाथ अहिरवार को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
0: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।

0: सुनाता आप मोबाइल पे की रेडियो है?
1: हम मोबाइल पे सुन लेते हैं।
0: और बताएं भैया अपने बारे में।
1: बस खेती किसानी काम कर रहे हैं, कटाई हो गई।
0: काई की?
1: पानी भी बरस गया है खूब।
0: तो कैसी है फसल?
1: बढ़िया है, मूंगफली भी लगी है, सकला की खेती है।
0: अच्छा, सकला भी लगी।
1: हाँ।
0: चलो ठीक है भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछ लें।
1: जी मैडम पूछ सक।
0: अटका कह रहा है, पेड़े में रहत है मनो पंछी नैया, जटा है मनो साधु नैया।
1: पेड़े में रहत है, ये तो नहीं भुटिया तो नहीं है सर? मक्का की?
0: नहीं नहीं,
1: जो मक्का की खेती कहते हैं ना उसमें?
0: नहीं नहीं, बुंटिया नहीं है।
1: पेड़े में रहत है?
0: हाँ, पेड़ में रहते हैं मगर पंछी नहीं है, और जटा है मनो साधु नहीं है।
1: जो मक्का तो नहीं है सर?
0: नहीं, मक्का नहीं है।
1: पेड़ में और क्या हो सकता है? संकेत दो थोड़ा आप।
0: और हम एक और बढ़ाए दे रहे, तीन नयन है मनो शंकर जी नहीं है।
1: तीन नयन शंकर?
0: हाँ। अब बताओ।
1: दिन तो नहीं है कि सुबह और दोपहर शाम?
0: नहीं नहीं, सुबह दोपहर शाम नहीं है।
1: चंदा सूरज पृथ्वी ये तो नहीं है?
0: नहीं नहीं, ये नहीं है।
1: आज हमारे अटका समझ में नहीं आया, लेकिन आप जब भी पूछा हमें आ जाए, लेकिन आज हम खुद को बात हुई जब आ रही।
0: और भैया हमारे का चुसरोता भैया उन्होंने बता भी दो मालूम?
1: अच्छा बता रहा हूँ, बाद में पता चले तुम को।
0: बिल्कुल, शुरू में पता चल जाने आपकी बार।
1: ठीक है, बहुत खुशी भाई मेरा, हम आप सही से बात भी नहीं कर पाए, इतनी खुशी भाई।
0: हाँ भैया, हमें भी खुशी होते जब हमारे नए नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ा थे।
1: मैडम बहुत दिन से सुना है, पिताजी और सुनते थे, मतलब रेडियो पे।
0: तो पहली बार लगू का आपको फोन?
1: हाँ फोन पहली बार लगा, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी है।
0: अरे वाह भैया, तो हम तो आपको खुबी खूब बधाई।
1: परिवार को पूरी बधाई है हमारी तरफ से।
0: बिल्कुल भैया, आपको भी खुबी खूब।
1: आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हो, बढ़िया कार्यक्रम पेश करते हो, बढ़िया मतलब।
0: चलो भैया, हमें बहुत खुशी भाई आप कार्यक्रम की तारीफ करी हमारे आकाशवाणी परिवार वालों के लाने।
1: लोग सुना तो बढ़िया उर्मिला पांडे को, अब काय करना आवाज ही मतलब कोई देवी भजन हुए उर्मिला पांडे की आवाज में।
0: ठीक है भैया, हम सुनवा रहे हैं आपको उर्मिला पांडे को गाओ जो देवी गीत।

0: बात ये है,
1: ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
2: हेलो।
3: हेलो
2: भैया, फोन करें, लोग की सुने।
3: नमस्कार साहब।
2: नमस्कार भैया, अपना नाम बताओ।
3: हम भागीरथ प्रजापति बोलक के नाम देवकलिया से।
2: कहाँ पे है भैया जो आपको देवकलिया?
3: जो भैया हमारा है छतरपुर जिला में है।
2: अच्छा अच्छा, तो पहली बार फोन लगा रहे हो?
3: साहब फोन तो लगाते रहे, आज कम से कम 20 साल से हो गए साहब।
2: अच्छा अच्छा,
3: और फोन नहीं लगा, हम भी अब परेशान रहे, व्यस्त बताओ कि साहब, लेकिन हम फोन लगाते ही रहे अब की बार।
2: देखो लगाते रहे आप तो लग भी गए फोन।
3: फोन लग गया साहब, बहुत खुशी हो रही है आज हमको साहब, आज की खुशी तो इतना मानो आप।
2: हाँ हाँ,
3: कि अब कुछ कहा नहीं जाता फोन के बारे में।
2: भैया अब अपने बारे में बता दो, कहा कि आप 20 साल बाद फोन लगा रहे हो, तो भागीरथ भैया करत कहाँ हैं, काका है, उनके शौक कैसे, का काम धाम चल रहे, ये सब बातें बता दो, जो भी आपकी मन में लगी हुए तो सब बता दो।
3: साहब हम किसानी भी करते हैं।
2: हाँ हाँ,
3: और मिट्टीगिरी का काम भी करते हैं मकान वाला।
2: बहुत ही अच्छी बात है भैया।
3: और जितना भी टाइम बाकी मिले तो हमारे पास टैक्सी भी है, वो भी हम चलाते हैं साहब।
2: भैया देखो मानो हम एक बात आपसे कहे हैं कि थोड़ा सा अपने शरीर को और मन को आराम दे, वो भी जरूरी है।
3: जी
2: इसे कहा होते भैया, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा को संचार हो जाता है अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में।
3: जी साहब,
2: तो जो काम अगलो अपन करें वो और नए तरीके से करते हैं।
3: हाँ जी साहब, क्या है कि हम जो आपकी विवेभाजी सुनते हैं घर पर।
2: हाँ हाँ,
3: तो सभी लोग हमारा मजाक कर रहे थे।
2: अरे नहीं भैया,
3: बोले तुम सुनते हो, जाने कितने दिन से सुनते हो, तुम्हारा फोन नहीं लगता है, ये है वो है।
2: हाँ हाँ
3: हाँ, इसलिए हमने यही कहा था कि फोन लगेगा, कब तक नहीं लगे, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब फोन लगेगा।
2: भैया आप जैसे श्रोताओं को हम भैया प्रणाम करते हैं। चलो तो अब उनको जवाब मिल जाए, जब अपन सोमवार को जो कार्यक्रम सुने सुबह 10:05 से।
3: जी साहब,
2: तो भैया काम खूब करो, मनो जीवन में थोड़ो सो अपने शौक के लाने भी टाइम दो, कि भैया अगर आपको तीर्थ पे जाओ अच्छा लगत है, उज्जैन जाने हैं, अमरकंटक जाने हैं, पचमढ़ी जाने हैं, तो अपने 3-4 दिन को गुप्प हो गए।
3: जी जी साहब, नहीं नहीं हम जाते रहते हैं, घूमते रहे, चित्रकूट है हमारे पास।
2: हाँ,
3: में शंकर है।
2: हाँ हाँ,
3: तो हम जाते रहते हैं साहब।
2: वही तो जरूरी है भैया, तो इनसे ही अपनो मन भी लगता रहे, जीवन में सब काम हो वो जरूरी है।
3: जी साहब, हमें तो ये लग रहा है कि चार हमें लोकगीत सुने ना, मेरे लिए बात ही होत रहा है।
2: नहीं भैया, हम लोकगीत भी सुनवा है और अटका भी पूछे आपसे।
3: हाँ पूछो साहब।
2: अटका कह रहा हो कि पेड़ पे रेत है मनो पंछी नहीं है, जटा है मनो सा

0: अधू नहीं है।
1: नारियल तो नहीं साहब?
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। भागीरथ भैया बहुत ही होशियारी से जवाब दे दो आपने। अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं?
1: साहब लोकगीत सुनवा दो मुन्ना सैनी का। आज बहुत खुशी है साहब, बात हो गई आपसे।
0: चलो भैया हमें भी बहुत खुशी भाई। तो सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे मुन्ना सैनी को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम फोन करे लोग की सुने हैं।
2: बिल्कुल सही भैया, सही जगह फोन लग गया आपको और सही समय से लग गया है।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्ते भैया, अपना नाम बताएं आप।
1: हम जमुनिया गांव से राजेश पटेल बोल रहे हैं।
2: राजेश भैया बोल रहे हैं जमुनिया से।
1: हाँ
2: भैया,
1: दिनों में लगो मैडम फोन, कम से कम हमें हो गए 5 साल है। और जब मैडम जो टच मोबाइल ना हो, पहली बार फोन है लगो।
2: अरे
1: जब कीपैड मोबाइल है तो जब चाहे लगा रेट तो
2: अच्छा।
1: हाँ
2: तो ऐसा का है भैया,
1: जो का पता है इनमें जो टू कॉलर सेट रेट है मैडम,
2: हाँ
1: जल्दी जल्दी काट के नहीं लगा पा। फिर हमने आज एक कीपैड मोबाइल देखो, फिर कीपैड मोबाइल में सिम डाल के लगा हो जब ये लग पाओ। हाँ
2: चलो भैया, आपने जो उपाय बता दो, समझ लो सब रेसरोता भैया हरों को।
1: टच मोबाइल से बहुत ऐसा आदमों को लग पाते फोन को, तो कीपैड मोबाइल देखो में जल्दी कट जा, जल्दी लग जा।
2: अच्छा
1: हाँ।
2: चलो अच्छी बात बता दे भैया, सब ने सुन ली अब तो।
1: हाँ सब ने सुन ली
2: है ना।
1: हाँ।
2: चलो और क्या काम कर रहे थे भैया आप?
1: अपन तो मैडम खेती किसानी करा थे।
2: अब खेती में क्या चल रहा
1: हूँ? सोयाबीन बावा मैडम, तो सोयाबीन की कटाई लग बे बारी है 2-4 दिन में।
2: अच्छा और उड़दा वगैरह?
1: उड़दा वगैरह मैडम हमने नहीं भाई।
2: अच्छा अकेले सोयाबीन लगाओ तो?
1: हाँ हमने तो सोयाबीन लगाओ तो।
2: अच्छा फिर सोयाबीन के बाद कौन सी फसल लेने हैं?
1: अब अपन तो पिसी चना की लेंगे।
2: अच्छा अच्छा, तो हम तो यही कहे भैया जो भी आप फसलें लो तो कृषि विशेषज्ञों की जानकारी के आधार पर ले हो तो ज्यादा मुनाफा हुई है ना।
1: नहीं मैडम, हम किसान कौन सेंटर से हमेशा जुड़े रहते
2: हैं। और अपनी ग्राम सभा से आकाशवाणी की
1: सबसे जुड़े रहते मैडम, किसान वाणी भी सुना थे।
2: हाँ हाँ,
1: अपन सबसे पहले कछु भी चीज करा थे तो किसान कौन सेंटर पे फोन लगा ली।
2: अच्छा और अपने तो भी भैया हेलो ग्राम सभा होते है ना, तो उनमें भी आप समस्याओं को समाधान ले सकते हो। अपने तो कृषि विशेषज्ञ पधारत है, सो जो भी किसान खेती बाड़ी से पशुधन संबंधी बाग बगीचा संबंधी परेशानियां होती है, समस्याओं को आप समाधान तुरंत ले सकते हो। और बढ़िया आपकी आवाज भी रेडियो पे जा है, सो मान लो जो आपकी समस्या है सुको समाधान हुई हो, जो श्रोता भैया हरे सुने उनकी भी वही समस्या हुई है तो उन्हें भी वही समाधान मिल जाए है ना।
1: हाँ,
2: आपसे हम आज को अटका पूछ ले।
1: पूछो मैडम।
2: अटका कह रहा है, पेड़ में रहते है मनो पंछी नैया, जटा है मनो साधु नैया।
1: पेड़ में रहते मगर पंछी नैया, जटा है मगर साधु नैया। इसको संकेत मैडम?
2: अब संकेत भैया बिल्कुल सरल है, खावे पीवे की चीज है।
1: चीज है
2: हाँ?
1: हमें तो नहीं आ रहा मैडम समझ में।
2: चलो कोनो बात नहीं भैया, अब लोकगीत बता दें आपकी, कौन सा लोकगीत सुनने हैं कौन को?
1: टीकाराम कुशवाहा को सुनवा दीजिए।
2: ठीक है भैया, अब हम सुनवा रहे हैं टीकाराम कुशवाहा को गाओ जो लोकगीत।
3: अरे ढूंढा तेरा मैं तेरे

तो भूत घने तमने देखी माता जानकी ले गाओ कौन हरे।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार भैया, अपना नाम बता दो।
1: हम सचिन पटेल कोरझावर सिलीगुड़ी जिला सागर से बात कर रहे हैं सर।
2: सचिन भैया खांस रहे हो, हालचाल कहाँ हैं?
1: सर जुकाम हुआ गणेश विसर्जन में गए थे।
2: तो गणेश विसर्जन में संगे गणेश जी के कूद गए थे क्या पानी में?
1: और का ले जाने पड़ा था ना गणेश।
2: अरे भैया मगर अब सावधानी रखने पड़ा था भैया, रात हो जाऊ थे नदी नाले में, देखो खांस खांस के बुरा हाल हो रहा है आपके।
1: और क्या करें सर।
2: तो भैया गर्म पानी पीवो शुरू करो और डॉक्टर को दिखाओ। तो भैया करत क्या हो सचिन आप?
1: सर हम किसानी करते हैं, पढ़ाई करते।
2: तो खेती किसानी में अबे क्या चल रहा भैया?
1: सर अभी गोभी लगी है, भटा लगे, सेम लगी।
2: बहुत अच्छी बात है भैया। और भैया आप जानते हो कि हम अटका भी पूछ लेते हैं एक।
1: जी सर।
2: तो अटका कह रहा है कि पेड़ पे रेत है मनो पंछी नहीं है, जटा है मनो साधु नहीं है।
1: नारियल के तो नहीं?
2: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
1: सर हमारे यहाँ पर पेड़ लगे हैं ना, आप सर जैसे कर बोल रहे।
2: हाँ भैया
1: हम सर आपके पूरे कार्यक्रम सुनते हैं।
2: बहुत ही बहुत धन्यवाद भैया। आप बताओ कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: लोकगीत सर चुन्नी राव एक बार को हाथ की सुनवा दिए।
2: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे चुन्नीलाल रेखवार और उनके संगी साथियों को गाओ भाओ जो लोकगीत।
3: मोरे मन के चरण लगे राजा खेलवान।

0: जयशेखर भैया ए लोकगीत के संगे अपनो कार्यक्रम चलो समाप्ति की तरफ।
1: मनोविन्ना बड़ो अच्छो अटका हतो और एक आधे श्रोता को छोड़ के सबने बता दो हैं तो जबी बड़ी खुशी की बात है।
0: बिल्कुल भैया, काहे की अटका सरल हतो और जल्दी अटका के लाने भी और समझ गए। हाँ। सो जल्दी जल्दी उन्होंने ने उत्तर दे दे।
1: अटका हतो पेड़ पे रेत है मनु पंछी नैया, जटा है मनु साधु नैया। तो भैया सीधो सच्चो जवाब है नरियल।
0: बिल्कुल,
1: आप सभी को भैया बहुत बहुत बधाई। और अगर आपके पास भी ऐसे नौने नौने अटका हो तो हमारे तक व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी भेजो भैया। और व्हाट्सएप पे भेजने के लाने आपको हम नंबर बता दें। नंबर है भैया 9770432297।
0: बिल्कुल भैया, तो जयशेखर भैया आपने मोबाइल को व्हाट्सएप नंबर बता दो अपने श्रोता भैयाहरों को, और अपन अपने कार्यक्रम को जो फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में, इको भी नंबर बता दें जिसे जो नए श्रोता अपने कार्यक्रम से जुड़वो चाहते हैं वे जुड़ जाएं।
1: बहुत ही अच्छी बात है।
0: अपने आकाशवाणी को फोन नंबर है 240-845।
1: मनो सागर को एसटीडी कोड जरूर लगाने हैं और वो है 075-82।
0: बिल्कुल भैया, अपन औरों को आशा है कि खूब ही खूब नए नए श्रोता अपने कार्यक्रम से जुड़े। और भैया एक बात तो वे रह ही गई।
1: बताओ
0: कि कौन दिना लगाने हैं और कितने बजे लगाने हैं।
1: हाँ, जब बात भी आपने सही कही, आपको लगाने हैं सोमवार को शाम को 4 बजे से।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। और भैया एक अनुरोध भी है कि जिनको फोन लग जाऊ थे वे 3 महीना की सादा पकड़ लेवे जिसे नए श्रोताओं को भी मौका मिल सके।
0: बिल्कुल जयशेखर भैया, आप अपन बता देवे कि आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलो आदिल खान से और प्रस्तुति हती जयशेखर की।
1: और अब दो भैया हम दोइयों को अनुमति।
0: राम राम, राम।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फोन करें लोकगीत सुनें, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर।
2: आज इस प्रोग्राम के इस अंक में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। सबसे पहले हम उनसे उनका पूरा नाम जान लेते हैं।
3: मैं ऋषभ बैकवार हूँ।
2: ऋषभ जी, हम सबके लिए इतनी खुशी की बात है कि आप इसरो में काम कर रहे हैं।
3: थैंक यू मैम।
2: आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए।
3: इसरो का तो सबको पता ही है कि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना, कुछ नए नए प्रोग्राम्स भी हैं जैसे कि ह्यूमन मिशन जो है और हमारा खुद का स्पेस सैटेलाइट जो भी है, उन सबके रिलेटेड में इसरो काम करता है, तो मैं भी उसी कड़ी में इसरो का साथ देता हूँ।
2: क्या बात है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब ऋषभ छोटे से थे और दीपक मेमोरियल एकेडमी में पढ़ते थे, तब के बारे में जानना चाहते हैं। आपने कब से वहाँ पढ़ाई शुरू की और कब तक पढ़े?
3: दीपक स्कूल के साथ मेरा साथ जो है क्लास 4 से स्टार्ट हुआ था और 12 तक मैंने वहीं तक पढ़ा। 2014 में मेरा स्कूल कम्प्लीट हुआ।
2: तो क्या तब से कुछ सपना ऐसा देखा था कि साइंटिस्ट बनना है या इतनी ऊंची उड़ान करनी है, ये सपना तब से था जब आप पढ़ते थे?
3: हाँ मैम था, मगर उस समय मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर कि मैं शायद कर भी पाऊंगा, क्योंकि मैं एक एवरेज ही स्टूडेंट था, तो मुझे इतना कभी लगा नहीं कि मैं इसरो में भी जा पाऊंगा।
2: फिर भी आप चले गए। अब ये बताओ आप ऋषभ, कि आप दीपक मेमोरियल एकेडमी को कितना इसका देते हो श्रेय कि जो आपको शुरुआती नींव की शिक्षा मिली उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया?
3: मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे टीचर्स का, स्कूल का, स्पेशली मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर्स का, जिन्होंने मुझे विज्ञान जगत से जोड़ा।
2: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये दीपक मेमोरियल एकेडमी के पढ़े हुए छोटे से बच्चे ऋषभ से इतना सपना साकार हो गया कि आप इसरो तक पहुंच गए, आगे क्या सपना देखा है आपने?
3: स्काई द लिमिट, बट फिलहाल तो यही कि इसरो में रहकर देश की सेवा करनी है।
2: बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने कूडो के जगत में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि वो एक इंटरनेशनल हस्ती बन चुके हैं। उनके मुख से जानते हैं उनका परिचय।
4: मेरा नाम सुहेल खान है, मैं कूडो का एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरी स्कूलिंग दीपक मेमोरियल स्कूल से हुई है। कूडो में मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक जीते हैं,
2: साथ साथ आपने रिकॉर्ड भी कायम किए हैं सुहेल।
4: जी जी जी, वर्तमान में मैं इनकम टैक्स विभाग में पदस्थ हूँ मुंबई में।
2: बड़ी खुशी की बात है। और आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आप दीपक मेमोरियल एकेडमी में पढ़े हैं, कितना सफर रहा दीपक मेमोरियल एकेडमी में आपका?
4: दीपक मेमोरियल का सफर मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहा है। मैं कभी भी दीपक मेमोरियल स्कूल को स्कूल नहीं, एज अपना दूसरा घर मानता हूँ। चाहे ऋतु जायसवाल मैम हो या ब्रिज सर हो, जब भी उनसे मिलता हूँ तो एज अ फैमिली पर्सन जैसे ही वो मेरे को ट्रीट करते हैं और वो मेरे को एज अ माता पिता जैसे ही गाइड करते हैं। दैट्स व्हाई आई फील दीपक मेमोरियल इज अ सेकंड होम फॉर मी। जिस मुकाम पे मैं हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस स्तर पे मैं पहुंचा हूँ या जिस जगह पे भी मैं पहुंचा हूँ, स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है।
2: अच्छा, जैसे आपने खेल कूद में बहुत अच्छा मुकाम पा लिया है, मतलब जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको स्कूल की खेल कूद की व्यवस्थाएं मिली वो कैसी थी दीपक मेमोरियल में?
4: हम दीपक मेमोरियल स्कूल में जो फैसिलिटीज है, आई डोंट फील वो फैसिलिटीज मैंने अक्रॉस इंडिया कहीं पे देखी हो। स्पोर्ट्स के प्रति जो इकोसिस्टम दीपक मेमोरियल ने क्रिएट किया है, दैट इज फेनोमिनल। ना कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो, यहाँ पे इतनी मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स की विद देयर एक्सपर्टीज टीचर्स। हमारे दीपक मेमोरियल स्कूल में क्रिकेट के एक्सपर्ट कोच भी है, कूडो के एक्सपर्ट कोच और बैडमिंटन के भी है, बास्केटबॉल के भी है, तीरंदाजी के भी है, शूटिंग के भी है। तो एक एक्सपर्टीज जो मिलती है हमें कोचेस के प्रति, और इतने मल्टीपल स्पोर्ट्स है, जिस वजह से मेरे को लगा कि ये इकोसिस्टम जो दीपक मेमोरियल स्कूल ने क्रिएट किया है वो बहुत ही फेनोमिनल है। वेयर एज आई नो दीपक मेमोरियल हैज आल्सो स्टार्टेड

0: स्पोर्ट्स अकेडमी के अंतर्गत वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय में खिलाड़ी जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप और कई अच्छे इनिशिएटिव चलाती है, तो ह्यूज क्रेडिट गोज फॉर दैट आई वुड से इनिशिएटिव।
1: तो हम चाहते हैं कि आप और भी अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया, जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए

0: एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी तो श्रोताओ, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओ, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
1: जी
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
1: जी
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
0: जय हिंद। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली
5: केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया।
2: इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है, हाँ? चल कर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: देखो, इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा, तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से। बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से।
1: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण है। बेटा, तू कौन है, कहां से आई है?
0: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो चलो
2: चलो। हाँ, जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था।